0: कलगुटकर आणि चंद्रशेखर मुळेकर, खनिका रुपाली भगत, निनाद होनतराव, शिवाजी पळदळवी, सरोज कुरडूकर, श्रुती श्रीकांत भावे, रवींद्र साने, सुनीता उत्तुरकर, रवींद्र जोशी, संतोष आणि शकुंतला महाजन, नागेश सुवर्ण चौगुले, भूषण दळवी, मिलिंद शेटे, प्रशांत दामरे, निशा लोहार, अंजली पाटील, सुरेश भावकर, दत्तात्रय आडत, राजेंद्र म्हात्रे, मुरलीधर रौंदळ, वर्षा भावार्थी, स्वाती कुलकर्णी, प्रमोद शेंडे, राजाराम कोर, विलास बुरुंगले, ज्योती चौधरी आणि महेंद्र चव्हाण, आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार की तुम्ही तुमचा सहभाग नोंदवलेला आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. असाच तुमचा प्रतिसाद देत राहा आणि कार्यक्रम ऐकत राहा.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा. सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं. इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है. गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है. प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी. शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं. राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं. गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है. बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा. इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है. 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा. संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा. और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊपर के साथ अगले दौर में पहुंची। स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डुन और एडम प्रिंगल ने फिटनेस की समस्या के कारण कोर्ट पर उतरे बिना ही मैदान छोड़ दिया। हालांकि इस अनचाही परिस्थिति ने सात्विक और चिराग की जोड़ी के गगनभेदी स्मैश और नेट पर चीते जैसी फुर्ती को देखने की उम्मीद कर रहे बैडमिंटन प्रेमियों को थोड़ा निराश किया। फिर भी ये भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैदान पर जीत के साथ अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिक्स डबल्स में 15वीं सीड ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो पर था। इस जोड़ी ने भी उम्मीदों को परवान चढ़ाया। दोनों का मकाऊ की जोड़ी लियोंग लोकचोंग और वेंग ची एनसी के खिलाफ मुकाबला एकतरफा रहा। पहला गेम भारतीय जोड़ी ने 21-11 से जीता। दूसरे गेम में भी शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और एक बार फिर स्कोर 21-11 ही रहा। ध्रुव ने बताया कि पिछले साल की गलतियों से सीखकर इस बार कोर्ट पर उतरे। वहीं तनिषा ने बताया कि बेहतर तालमेल से जीत आसान हो गई।
1: सिंस लास्ट ईयर वी लर्नड अ लॉट एंड दिस ईयर इट्स गोइंग वेल नाउ। लाइक देयर आर डेज लाइक व्हेन वी आर नॉट एट द बेस्ट बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट लाइक हाउ डू वी हैव टू बिकम मोर स्टेबल एंड कीप परफॉर्मिंग वेल।
2: बिफोर हिम कमिंग माय गेम वाज नॉट मोर मिक्स्ड डबल्स ओरिएंटेड बट आई थिंक आफ्टर हिम स्टेपिंग इन ही हैज चेंज्ड माय गेम अ लॉट एस्पेशली लाइक मूविंग इन एंड बीइंग मोर एग्रेसिव व्हिच गिव्स ध्रुव अ लॉट मोर opportunity at the back and that's I think that's exactly what's needed in mixed doubles and gives us the right plan.
0: हालांकि भारतीय खेमे की सफलता के तीसरे दिन का सिलसिला मेंस डबल्स में टूट गया जब हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की भारतीय जोड़ी 15वीं रैंक कोरियाई जोड़ी कैंग मिन ह्यूक और की डांग जू से पहले गेम में संघर्ष के बाद मैच 17-21 14-21 से हार बैठी। इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी के बीच वैसा तालमेल नहीं बन सका जिससे वे जीत तक पहुंच सकते थे। एम आर अर्जुन ने भी इस बात को माना।
3: आई थिंक हम लोग स्टार्ट अच्छा ही किया था मैच से पहले। हमारा टैक्टिक ऐसा था कि कोरियंस के साथ यू नो दे आर वेरी गुड एट डिफेंस तो मैच लंबा होने वाला था एंड हम लोग मेंटली प्रिपेयर था लंबा मैच खेलने के लिए एंड आई थिंक 15 ऑल तक वी एक्सिक्यूटेड आवर टैक्टिक प्रीटी वेल। हियर एंड देयर मिस्टेक्स हो रहा था बट हम लोग कवर भी कर रहा था 15 ऑल तक लेके आया मैच को बट फिर उधर से जो आई थिंक 2-3 पॉइंट्स कंटिन्यूस चला गया आई थिंक दैट कॉस्ट अस द मैच बिकॉज 18-15 से एक्सपीरियंस पेयर है वो लोग तो एक एक्सपीरियंस पेयर से 18-15 डाउन से टू ब्रिंग अप द मैच और क्लोज द मैच इज सच डिफिकल्ट टास्क।
0: कोर्ट नंबर 3 पर इसके बाद बारी आई भारतीय महिला बैडमिंटन की नई सनसनी उन्नति हुडा की। उनका मुकाबला था 13वीं रैंक वाली कनाडा की मिचेल ली के साथ। बिना किसी दबाव और तनाव के कोर्ट पर उतरी उन्नति ने हार के बावजूद सबको अपना मुरीद बना लिया। पहला गेम 21-11 से जीतने वाली हरियाणा की उन्नति ने दूसरा गेम आसानी से 9-21 से गंवा दिया। लेकिन इस मैच का सारा रोमांच तो जैसे तीसरे गेम में छिपा था। उन्नति दो बार मैच पॉइंट पर भी पहुंची लेकिन कैनेडियाई खिलाड़ी ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 23-21 से अंतिम गेम और मैच दोनों जीत लिया। लेकिन बैडमिंटन प्रेमियों का दिल तो भारतीय लड़की ने जीता। तभी तो हार के बाद भी उन्नति के चेहरे पर मुस्कान थी।
4: बहुत अच्छा मैच था। आई प्लेड रियली गुड। मैंने अपना पूरा दिया बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई। दो बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई पुश्ड मायसेल्फ एंड पुश्ड हर आल्सो। इट वाज अ रियली गुड मैच एंड आई एम हैप्पी द वे आई प्लेड ऑन द नेट। आई डिड गुड टैप्स एंड ड्रिबल्स आल्सो। आई फील लाइक इन बिटवीन 2-3 पॉइंट्स आई डिड फ्यू सिली मिस्टेक्स फ्रॉम माय हैंड दैट आई शुडंट हैव बीन डन बिकॉज़ वो वर्ल्ड नंबर 13 है सो आई थिंक उसकी तरफ से सिली मिस्टेक्स बीच बीच में क्रिटिकल मोमेंट्स पे बहुत कम हुए एंड व्हेनेवर शी हैड द चांस शी जस्ट टुक इट सो आई हैव टू लर्न दिस।

0: फ्रॉम प्लेइंग विद द अपर रैंक प्लेयर्स.
1: उन्नति ने माना कि इस मैच ने उन्हें ढेर सारा अनुभव दिया.
0: या आई फील लाइक इन दिस टूर्नामेंट आई वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई वाज बिट मोर पेशेंट देन माय प्रीवियस गेम्स एंड आई वाज स्टिकिंग टू द प्लान एंड व्हेन शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम प्लेइंग सो आई वाज एबल टू चेंज माय गेम प्लान आल्सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सो इट हैज इंप्रूव्ड इफ आई कंपेयर विद माय प्रीवियस मैचेस.
1: लगातार दो हार से हताश भारतीय खेमे की निराशा को मेन सिंगल्स में 14वीं सीड लक्ष्य सेन की हार ने और गहरा कर दिया. मैच में फेवरेट लक्ष्य की चुनौती को अमेरिका के गैरेट टैन ने मैराथन मुकाबले में 21-19, 19-21, 17-21 से ढेर कर दिया. पराजय से परेशान लक्ष्य ने माना कि विरोधी ने ज्यादा बेहतर खेल दिखाया.
2: इट वाज अ गुड मैच. आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय ओपोनेंट. ही प्लेड अ वेरी सॉलिड गेम एंड again towards the third set both of us were like completely exhausted so yeah I think I gave it my all in the end but yeah it was just not enough to win this match and yeah a little bit disappointed.
1: Iske baad bari thi Bharat ke men's badminton ki nayi ummeed आयुष शेट्टी की. पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर वन को शिकस्त देने वाले आयुष ने श्रीलंकाई प्रतिद्वंदी दिमेंदु अभय विक्रमा को मात्र 26 मिनट में एक तरफा अंदाज में 21-8, 21-10 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी शक्ति को बचा लिया. आयुष ने कहा मैच आसान था.
3: आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ टफ मैच. आई थिंक ऑल माय मैचेस आई कम प्रिपेयर्ड एज इफ यू नो इट्स गोना बी अ रियली ग्रेट मैच बिकॉज आई थिंक एवरीवनस प्लेइंग गुड प्लेइंग ग्रेट बैडमिंटन आई थिंक इन मेन सिंगल्स सो या आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ टफ मैच बट हैप्पी विद द यू नो कंफर्टेबल डेफिनेटली. आई थिंक इट बी अ ग्रेट मैच अगेन टुमारो अगेंस्ट एलवी. आई प्लेड हिम अ कपल ऑफ टाइम्स. इट्स ऑलवेज अ ग्रेट मैच एंड सुपर टफ ओपोनेंट. एज ऑफ नाउ यू नो रिकवर एंड आई थिंक लेटर यू नो वी प्रिपेयर फॉर द मैच एनालाइज the match and yeah I think we'll be preparing really well.
1: कहते हैं कि अंत भला तो सब भला. तीसरे दिन भारत के लिए अंतिम मैच में कोर्ट पर उतरी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु. सिंधु ने राउंड ऑफ 32 में कनाडा की वेन यू झेंग को 21-16, 21-17 से मात दी. मैच के बाद सिंधु ने कहा कि इस जीत के बाद अब वो अगले मैच के लिए भी तैयार हैं.
4: मुश्किल ही होगा ऑब्वियसली. इजी मैचेस नहीं रहेगा. अभी जब हम टॉप एथलीट्स के साथ खेल रहे तो इजी मैचेस या इजी पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग मैचेस एंड आई एम रेडी फॉर इट एंड मैं वांगजी के साथ बहुत अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव प्लेड अगेंस्ट हर एंड वी नो ईच अदर्स गेम. बस आई नीड टू गिव माय बेस्ट एंड प्ले माय गेम.
1: सिंधु ने माना कि उनके लिए फिटनेस को बनाए रखना इस समय एक चुनौती है.
4: या आई थिंक रिकवरी प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड यू नो बैक देन व्हेन यू आर एट योर 20s यू आर लाइक ओके यू नो यू कैन प्ले यू कैन कम बैक यू कैन प्ले एंड देन यू कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन बट आई थिंक आफ्टर सर्टन टाइम यू नो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड यू नॉट 20 और 19 anymore. You need to understand your body and accordingly smartly make those changes.
1: विदेशी खिलाड़ियों में वर्ल्ड नंबर 6 चाइनीज ताइपे के चाओ तियन चेन ने इटली के जियोवानी टोटी को आसानी से 21-12, 21-11 से शिकस्त दी. तीसरी सीड इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी भी सिंगापुर के जिया हैंग ते के साथ 19-21, 21-19, 21-11 से जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. 12वीं सीड चाइनीज ताइपे के लिन चुन यी डेनमार्क के रास्मस गेमके से हार कर उलटफेर के शिकार हुए. महिला वर्ग में टॉप सीड कोरिया की अन से यंग, तीसरी सीड चीन की वैंग जेई ही, 10वीं सीड जापान की कोदाई नाराओका, 5वीं सीड चीन की हैन यू भी अन्य खिलाड़ियों के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब आज चौथे दिन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं. महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला भारतीय अभियान का आगाज करेंगी. इस जोड़ी का सामना 7वीं सीड जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी से होगा. मिक्स डबल्स के राउंड ऑफ 16 में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो 6ठी सीड चीन के गो जिनवा और चेन फेंग हुई से भिड़ेंगे. मेन सिंगल्स में आयुष शेट्टी का सामना 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा. महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में तीसरी सीड चीन की वांग जीए से दो दो हाथ करेंगी. भारत के लिए दिन का अंतिम मैच मेंस डबल्स में 5वीं सीड सात्विक सायराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का होगा. यह जोड़ी मलेशिया के जुनेदी आरिफ और यैप रॉयकिंग से खेलेगी. तो तिरंगा यूं ही आसमान की बुलंदियों पर लहराता रहे, जीत का कारवां आगे बढ़ता रहे और भारतीय बैडमिंटन की स्वर्णिम गाथा लिखी जाती रहे. इन्हीं कामनाओं के साथ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर स्वाति और इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश.
5: तो अभी आप सुन रहे थे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप, जो विश्व महासंघ है चैंपियनशिप चल रहा था, उसकी आपने रिपोर्ट सुनी. उम्मीद करते हैं रिपोर्ट पसंद आएगी. और अब

0: हमारा आगे
1: आकाशवाणी और
2: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक

0: साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अगले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गौर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. and Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 8:40 बज चुके हैं और आया हूँ मैं यानी कौन, आपका प्यारा दोस्त आरजे अनूप। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो पर मस्त मुंबई। और चलिए आज का सफ़र जो है हमारा, ये शुरू करते हैं मेरे हमेशा जैसे एक प्यार भरे मुस्कुराते हुए आप सभी को दिल से प्रणाम के साथ। दोस्तों, शो का नाम तो मस्त मुंबई है, बट जो अभी मस्त हो रहा है ना मुंबई में, वो ये है कि यहाँ का जो मौसम है ये हमें मस्त उल्लू बना रहा है। देखिए ना कैसा हो रहा है कि अगर आप घर से बिना छाता लिए निकल रहे हैं ना, तो 10 मिनट ऐसी बौछार आ जाएगी कि आपको लगेगा अरे यार मैं छाता लेके क्यों नहीं निकला। और अगर आप छाता बिना लिए निकले तो आपको भरी धूप में अचानक से मौसम एक ब्रेक लेगा और ऐसी बारिश कर देगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भरी धूप में आप छाता लेके निकले हो तो लोग सोचते हैं कि अरे ये आदमी इतनी धूप में छाता लेके क्यों निकला है। तो कुछ असमंजस सा मौसम हो चुका है अभी मुंबई में। और यही नहीं, लोकल ट्रेन में भी आप सफ़र करेंगे तो कोई ना इस बारे में बात कर ही रहा है कि कैसे मौसम जो है हम सबके साथ खेल रहा है। मैं तो देखिए लोकल ट्रेन में अकेला सफ़र करता हूँ तो चुपचाप सुनता रहता हूँ कि भाई लोग क्या बातें कर रहे हैं। और जब मौसम की ये बात होती है ना तो बस मुस्कुरा देता हूँ कि हम सब एक दूसरे से बात करने के लिए कैसे कोई रोज़मर्रा की चीज़ ढूंढी लेते हैं ना। तो आप, जी हाँ आप ही, जहाँ भी हैं आप और मुझे सुन रहे हैं तो आप भी एक बार मुस्कुरा दीजिए। हम मिलेंगे ठीक इस गाने के बाद। और शो का नाम है मस्त मुंबई मेरे यानी आरजे अनूप के साथ।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और मैं हूं आरजे अनूप। दोस्तों, तारीख है आज 20 अगस्त। आज का दिन जो है इतिहास, प्रगति और हमारी सोच को एक नई दिशा देने वाले अवसरों का संगम है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये हम शो के दरमियान समझेंगे। आज भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती है। इस दिन को पूरा देश जो है सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाता है। कंप्यूटर और आईटी की सोच रखने वाले राजीव जी का मानना था कि भारत का भविष्य उनकी सोच और तकनीक में छुपा है। और दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं आईटी की, तो भारत को ग्लोबल मैप पर चमकाने की बात जब आई तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वह है NR नारायण मूर्ति जी का, है ना। आज 20 अगस्त को इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति जी का भी जन्मदिन है। सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी से शुरू हुई इंफोसिस की कहानी आज आप, मैं और हम सभी लोगों के दिल में छप चुकी है।

लेकिन बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के दिन के उस संदेश की जो हमारी धरती और हमारे भविष्य को ना सुरक्षित बनाएगा।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। अब बात करेंगे हम दोस्तों उस एक एक्टर की जो पर्दे पर आते ही ना पूरे कैरेक्टर को निकल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के एक बेहद वर्सेटाइल और डेडिकेटेड एक्टर्स में से एक, रणदीप हुड्डा की। आज रणदीप हुड्डा जी भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सरबजीत में उनका ट्रांसफॉर्मेशन याद है ना दोस्तों आपको, क्या गजब था। और अगर मैं बात करूँ तो हाईवे का वो रफ एंड टफ अंदाज भी हम कैसे भूल सकते हैं। और हाल ही में स्वतंत्र वीर सावरकर जो फिल्म आई थी, उनके लिए उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की, काबिले तारीफ थी दोस्तों। और उन्होंने साबित कर दिया कि मेथड एक्टिंग जो है वो क्या होती है। हरियाणा के जाट बॉय से लेकर बॉलीवुड के एक पावर हाउस परफॉर्मर तक का जो उनका बनने का सफर है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो आज 107.1 FM रेनबो के पूरे परिवार की ओर से रणदीप हुड्डा जी को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

हो जाता है दोस्तों। तो मेरा शो जो है उस पर बने रहने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और कोई आपके सुझाव है आज के शो टॉपिक्स को लेके तो हमारा नंबर है 8657-66-1071, 8657-66-1071। और मैं देख सकता हूँ हमारे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, और हमें अभी जो लाइव सुन रहे हैं वे है नागपुर से अशोक और रीटा जायसवाल, सांगली से प्राजक्ता अग्निहोत्री, पुणे से सतीश वसंत कुलकर्णी, कोपरगांव से प्रकाश जोशी जी, और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी जी, और विजेंद्र घटोल जी जो है अकोला से हैं। प्रणव शिंदे हमारे लिसनर कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अनूप जी, और आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है सुन के, थैंक यू प्रणव जी। अकोला से विजेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले गाने से आपके जो गाने हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें, और वैदेही जो है कह रही हैं गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। अंधेरी से अंजू जो है डॉक्टर हैं कह रही हैं गाने बहुत अच्छे हैं, बढ़िया स्टार्ट हुआ है शो का। और सुजाता अंग्रेजी हैं डोंबिवली से, गुड मॉर्निंग सुजाता जी। पुणे से प्रमोद कारखनेस है, पंकज माहौट जी अमरावती से है, और बेलापुर से दत्तात्रेय अदत जी है, और फिरोज सिगनपुरिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एक एक करके पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बस थोड़ा समय दीजिए मुझे।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं आपका प्यारा सा आरजे अनूप। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं एक डायलॉग कि वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूं लेकिन यहां मैं पिघल गया, तो आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? कोई गेसेस? और अगर आप कोई गेस कर पा रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर बताइए, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इंदौर की गलियों से निकल कर और दिल्ली से होते हुए नेशनल टीवी और इंटरनेशनल स्टैंडअप स्टेजेस का ऐसा सफ़र इन्होंने नाप लिया है कि इनकी तारीफ़ के लिए आज मैं जितने पुल बांधूँ वो कम है। तो इन्होंने अपनी सादगी, हक से सिंगल के डायलॉग्स और अपनी पोएट्री से हम सबका जो दिल जीता है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो आज इनका भी बर्थडे, अगर आप समझ गए कौन है तो मुझे व्हाट्सएप कर तुरंत बताइए।
2: Cosmos डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: eKYC,
3: NEFT, RTGS,
2: IMPS,
3: Cosmos रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
2: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे अनूप। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। और इस गाने के पहले मैंने आपसे पूछा था एक डायलॉग देने के बाद कि ये डायलॉग किस स्टैंड अप कॉमेडियन का है, तो इसका काफ़ी लोग सही जवाब दे रहे हैं। पर सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो है मलाड से रितेश शेट्टी ने, और इनके साथ बाकी कई लोगों ने भी सही जवाब दिया है। मनीषा फंड से है, मनीष जो है वकलीना है कांदीवली से, पंकज माहौज जी है, तो जी हाँ जाकिर खान जी जो है बेहद उम्दा स्टैंड अप कॉमेडियन। और जाकिर खान जी, आप की जो अदा है ना स्टैंड अप कॉमेडी की, वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो FM रेनबो के पूरे परिवार की ओर से आपको अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जाकिर जी।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर सिर्फ 1 रुपए में पाए 1 GB डेटा रोज 100 SMS रोज अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता सीमित अवधि का खास ऑफर हर दिल जुड़े भारत बढ़े BSNL के साथ आगे बढ़े अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1503 पर कॉल करें।

दोस्तों, और मेरे लिए भी अगर आप मेरे श्रोता हैं, मेरे लिसनर्स जो हैं, अगर वो नहीं होंगे मेरे पास तो मेरा भी क्या ही होगा, है ना। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बेंगलोर से मेघा और सुरेश भी है, और अंधेरी से नरेश शाह, प्रतिभा शाह जी हैं, तुलसी डेमला जी हैं, सुब्बलक्ष्मी मत्सकर जी जो हैं वो कह रही है गाने आप बहुत अच्छे बजा रहे हो अनूप जी, फिरोज सिगनपोरिया जी जो है वो कह रही है तेरी आवाज़ इतनी प्यारी है क्या कहूँ, थैंक यू बहुत ज़्यादा। और विशाखापट्टनम से रीना भी हमें सुन रही है, क्या बात है। दोस्तों, आज भारतीय चेस क्वीन तानिया सचदेव जी का भी जन्मदिन है। इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब रखने वाली तानिया ने 6 साल की उम्र में पहला नेशनल टाइटल जीत लिया था। सोचिए, 2006 और 2007 में वो भारतीय महिला चेस चैंपियन बनी थी, और 2007 में ही एशिया की महिला चेस चैंपियन बनी, क्या बात है। यही नहीं, 2016, 2018 और 2019 में वे कॉमनवेल्थ महिला चेस चैंपियन बनी। और दोस्तों, आज इसी के साथ हम याद कर रहे हैं भारतीय फुटबॉल के लेजेंड गोष्ठपाल जी को, जिनका आज जन्मदिन है। भारतीय फुटबॉल की दुनिया में गोष्ठपाल जी को चीन की दीवार भी कहा जाता था। बेहद गजब के खिलाड़ी थे वे, मोहन बगान के पूर्व कप्तान थे, और भारतीय फुटबॉल के वे मजबूत स्तंभ थे जिन्होंने नंगे पैर खेलकर भी अंग्रेजों की टीमों को धूल चटाई थी। उनके सम्मान स्वरूप 1998 में भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पर एक स्टैंप भी जारी किया था। तो खेल के जो दो दिग्गज हैं हमारे, तानिया सचदेव और गोष्ठपाल जी, इन दोनों स्पोर्ट्स आइकन को FM रेनबो 107.1 की ओर से हैप्पी बर्थडे और सलाम।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
3: वेलकम बैक मैं हूं आरजे अनूप और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर कल्पना राजू उल्हासनगर से हैं कह रही हैं कि अनूप आप मेरे सारे फेवरेट गाने बजा रहे हो थैंक यू मंजरी अग्निहोत्री जो हैं सांगली से कह रही हैं कि बहुत ही प्यारे पुराने और मेरे फेवरेट गाने बजा रहे हैं अंधेरी मुंबई से छाया और सुरेंद्र जायसवाल जी भी हमें सुन रहे कह रहे हैं आपके बोलने का अंदाज जो है आपकी जो स्क्रिप्ट है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है आज की थैंक यू तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज के जन्मदिन की पर देखिए आज भारत ने ना 20 अगस्त को कुछ अपने अनमोल रत्नों को भी खोया है आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत के योग गुरु फादर ऑफ मॉडर्न योगा फादर ऑफ योगा इन इंडिया को जिन्हें 2004 में टाइम मैगजीन ने अमेरिका की जो टाइम मैगजीन है उन्होंने दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की अपनी यादी में जारी किया था शामिल किया था तो अगर आप बता सकते हैं मुझे ये कौन है जो इतने बड़े दर्जे तक पहुंचकर अमेरिका की टाइम मैगजीन में अपना नाम योग के द्वारा लाए तो मुझे तुरंत बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 8657661071 और इसी के साथ दोस्तों साहित्य जगत के एक चमकते सितारे गोपीनाथ मोहंती जी को हमारा प्रणाम हमारी श्रद्धांजलि ओडिया जगत जो है साहित्य का

उसके पितामह कहे जाते थे गोपीनाथ मोहंती जी। वे पहले लेखक थे जिन्होंने 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था और उसके बाद उनके महान उपन्यास माटी मटाल के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। क्या बात है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ओडिशा की जनजातीय संस्कृति, उनकी संवेदनाएं और जमीनी जीवन को जिस बारीकी से उकेरा वो आज भी भारतीय साहित्य की धरोहर है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां शरीर और मन को साधने वाले योग, तो दूसरी तरफ आत्मा को छू लेने वाली कलम, इन दोनों शख्सियतों को हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं आरजे अनूप और शो है मस्त मुंबई। दोस्तों कमाल का दिन है ना आज। मैंने आपको कितनी सारी प्यारी बातें बताई कुछ लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन है और जिनको आज हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो राजनीति से लेकर बिजनेस तक, फिल्मों से लेकर खेल तक, साहित्य तक, योगा और स्टैंड अप कॉमेडी भी। आज देखिए हर जो इंडस्ट्री है ना, जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग हमें आज खूब प्रेरणा दे रहे हैं। वैसे आज 20 अगस्त को एक बहुत खास और अहम दिन भी है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस यानी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों ये शब्द जो हम रोज सुनते हैं ना, ये केवल साधारण शब्द नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो है भविष्य है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है ना दोस्तों, वैसे हमें अपने जो कुदरती संसाधने हैं उनकी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी आदतें जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, अन्य चीज़ों को बचाना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, यही सब चीज़ें तो इस खूबसूरत धरती को और बेहतर बना सकता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तो मस्त मुंबई का सफ़र यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी 10 बजे मैं आऊँगा आपके सामने हिंदी में समाचार लेकर। उसके बाद 11 बजे हम मिलेंगे आपसे नमस्ते भारत में, और नमस्ते भारत में हम बात करने वाले हैं आज भारत के जो योग गुरु है और जो फादर ऑफ योगा इन इंडिया कहते हैं उनके बारे में। अगर आप मुझे उनका नाम बताना चाहते हैं तो बताइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। मिलते हैं ठीक 10 बजे समाचार पर, और उसके बाद 10:03 पर शो का नाम होगा नमस्ते भारत।

0: दोस्तों अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार मेरे यानी आरजे अनूप के साथ। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। भारत की पहली यात्रा पर आए जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। 18 से 30 साल की उम्र के युवा, जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, एनएसएस वॉलंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल है, युवा संगम के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अंत में खेल समाचार। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच एम्स्टलवीन के वेंगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ समाचार समाप्त।
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: के चले।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और शो का नाम है क्या, आप मुझे बताइए। नमस्ते भारत। जी हाँ, सही बताया है हमें काफ़ी लिसनर्स ने। नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी तारीफ भी आज मेरी हो रही है तो मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। और मैंने आपसे पहले पूछा था कि आज जो है भारत के एक योगा गुरु, बहुत बड़े नाम, जिनको टाइम्स मैगजीन ने अपनी 100 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल किया था, उनका नाम। चलिए अब बात करते हैं उनके बारे में। बात करते हैं एक ऐसी भारतीय शख्सियत की जिन्होंने भारत की सदियों पुरानी योग परंपरा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। और एक ऐसा इंसान था वो जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग गुरु BKS अय्यंगर जी की, यानी बेल्लूर कृष्णामचार सुंदर राजा अय्यंगर जी के बारे में। और इस का सही जवाब दिया था मनीषा फंडसे जी ने, सुरेश काशीनाथ पटेल जी ने, अविनाश कड़ू जो वाडवन टिगरेपाड़ा से है, मंजिरी ने भी दिया था इसका सही जवाब, और शकुताई जो है माधवनगर से, उन्होंने भी इसका सही जवाब दिया था। तो आइए इनके बारे में और बात करेंगे ठीक है इस गाने के बाद।
2: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
3: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
2: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
3: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
2: भूल गई। ना ना,
3: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Bani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. मैं हूं आपका आरजे अन्नु. पर हम आज बात कर रहे हैं भारत के योग गुरु, द फादर ऑफ योग इन इंडिया, योग गुरु बीकेएस अय्यंगर जी की. दोस्तों, 14 दिसंबर 1918 को कर्नाटक के बेल्लूर गांव में जन्मे बीकेएस अय्यंगर साहब का बचपन जो था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था. 1918 में फैली फ्लू महामारी के दौरान उनका जन्म हुआ था. सोचिए, फ्लू महामारी के दौरान किसी का जन्म होना कितना कठिन वैसे भी हुआ होगा. बचपन में ही वे टीबी, मलेरिया और टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए थे. डॉक्टरों ने तो यह तक कह दिया था कि वे शायद 20 साल की उम्र तक भी नहीं देख पाएंगे. तो शरीर बेहद कमज़ोर था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले के हाथ होगा वही होगा. किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 16 साल की उम्र में वे मैसूर गए और वहीं से शुरुआत हुई उनके जीवन की, एक नए सफ़र की. और दोस्तों, आगे क्या हुआ ये मैं बताऊंगा आपको थोड़े ही समय में इस गाने के बाद. फिलहाल के लिए हमारे साथ और भी नए लोग जुड़ चुके हैं. किशोर नाइक जी हैं माधव नगर से, शैलजा गोरे हैं जो कह रही है मैं खुद एक योगा गुरु हूँ और 80 से ज़्यादा मेरी आयु है. क्या बात है शैलजा गोरे जी, आपको भी मेरा बहुत बड़ा सलाम. ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान जुड़े हैं. दादर से आदर्श कनौजिया जी जुड़े हैं और इंदौर से अजय साखरे जी भी जुड़े हैं. तो इस गाने के बाद हम जानेंगे बीकेएस अय्यंगर जी, हमारे भारत के योगा गुरु के बारे में और कुछ रोचक बातें.

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कितनी प्यारी बात कह दी ना, और देखिए कितने आसानी से कह दी। ऐसे हमारा जो ये रेडियो है दोस्तों, 107.1 FM रेनबो का जो परिवार है, वो भी आपकी और हमारी कहानी ही तो है। आपको जो गाने अच्छे लगते हैं, हमें वो गाने प्ले करना अच्छा लगता है। देखिए हुई ना बात, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। शुभदा कह रही हैं कि बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट है अनूप जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। सेम बात कह रहे हैं प्रमोद चिंचोड़कर जी, और डोंबिवली से सुजाता अंग्रेजी कह रही हैं कि जब से आपका ये शो ज्वाइन किया है मैंने आज सुबह से, तब से मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, गाने इतने अच्छे हैं। सेम बात कर रहे हैं पालघर से हेमंत लेले जी की, अनूप जी बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। पुणे से सीमा सुहानी जी कह रही हैं कि इतने अच्छे गाने लग रहे हैं अनूप जी, थैंक यू, आप हमारे ज़माने के गाने हमें सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा जी, मैं तो हमेशा वही करूँगा जो आप लोगों को अच्छा लगे, और आप हमारे लिसनर्स हैं और हम सब वही चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमारा रेनबो का परिवार ऐसा ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज योग गुरु BKS अय्यंगर जी की। तो मैसूर में उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु और बहनोई श्री तिरुमलाई कृष्णाचार्य से, जिन्होंने आधुनिक युग का पितामह भी कहा जाता है। कृष्णाचार्य जी ने अय्यंगर साहब को योग सिखाना शुरू किया। शुरुआत में शरीर में लचीलापन नहीं था तो योग करना बहुत कठिन हो गया, लेकिन अय्यंगर जी का जो इरादा था ना, वो फौलादी था। उन्होंने हार नहीं मानी, रोज घंटों अभ्यास करते करते जिस योग से उनकी बीमारियां दूर हुई ना, वही योग उनकी पहचान भी बन गया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब आप योग क्लास में ब्लॉक या बेल्ट या चेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह विचार किसका था? यह विचार था अय्यंगर साहब का। उन्होंने ही यह महसूस किया कि देखिए हर इंसान का शरीर अलग होता है। जैसे बचपन में उन्होंने भी काफ़ी यातनाओं को झेला था, शारीरिक समस्याओं की, बीमारियों की, तो उन्होंने यह महसूस किया कि देखिए कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है तो कोई कमजोर, इसलिए उन्होंने योग में प्रॉप्स मतलब सामग्रियां जैसे लकड़ी रस्सियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि हर वर्ग और सही व्यक्ति को योग आसान लगे। इस अनोखी शैली को दुनिया अय्यंगर योगा के नाम से भी जानती है ना, कितनी कमाल की बात।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

दोस्तों वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं योग गुरु बी के एस अय्यंगर जी की। तो बात है 1952 की, जब मशहूर वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन भारत दौरे पर आए और उन्हें अनिद्रा यानी इंसोमनिया का इतना त्रास था, परेशानी थी जिसे हम कहते हैं। तो वे अय्यंगर जी से मिले और अय्यंगर जी के साथ से 15 मिनट में उन्होंने जो एक योगासन का वो सीखा, उससे उनके तनाव जो है वो पूरा ही तरीके से चला गया। तो वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो अपने साथ उन्हें यूरोप ले गए। उसके बाद में तो जैसे पूरे विश्व में अय्यंगर जी के नाम का ढिंढोरा बच गया और इसी के बाद टाइम मैगजीन ने 2004 में उन्हें दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। है ना कमाल की बात। उनकी 1967 में प्रकाशित हुई किताब लाइट ऑन योगा को आज भी दुनिया में योगा का बाइबल माना जाता है। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया और 2014 में 95 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। और जब ऐसा हुआ तब तक वे दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुके थे। तो दोस्तों नमस्ते भारत में, मैं आरजे अनूप और मेरा सफर आज यहीं समाप्त हो रहा है। पर बी के एस अय्यंगर साहब की जिंदगी ना हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपकी इच्छा शक्ति और निरंतर अभ्यास आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। तो चलते चलते अय्यंगर जी का एक खूबसूरत जो कहावत है जो उन्होंने कहा वो आपको बताता हूं कि योग शरीर को ही नहीं बदलता बल्कि आपकी पूरी दृष्टि को बदल देता है। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, थोड़ा योग करिएगा और खूब सारा मुस्कुराइएगा। मैं हूं आपका दोस्त और आपका आरजे प्यारा अनूप 107.1 FM रेनबो पर। फिल्म मिलूंगा बहुत जल्दी और जाते जाते मेरी तरफ से एक मुस्कुराता हुआ नमस्ते।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आज के समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। श्री राधाकृष्णन आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 2024 बैच के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में कल मालेगांव चालीसगांव मार्ग पर राज्य परिवहन की एक बस और ट्रक की टक्कर में दो बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 31 यात्री घायल हो गए। घायलों को मालेगांव के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल के दिन महिला सिंगल्स के भारत में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की सिड वांग जीई से होगा। पुरुष सिंगल्स में भारत के डब्ल्यू करने वाले आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। इसी के साथ प्रमुख समाचार यही समाप्त होते हैं।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हेलो दोस्तों, सुबह के 11:02 हो रहे हैं। आपका स्वागत है ब्रेक फ्री सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। मैं हूं आपका दोस्त, आज का आपका होस्ट आरजे गंधर्व। आज मैं आपको कहानियां सुनाने जा रहा हूं, साईफाई कहानियां। देखना भविष्य में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। चलिए सुनते हैं, पर उससे पहले सुनेंगे आज का ये दमदार गीत।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। मैं आपको साईफाई कहानियां सुना रहा हूं। साल 2090 में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को एक ऐसा ग्रह मिला जहां इंसान अपनी हर गलती सुधार सकता था। किसी से झगड़ा हुआ, वापस जाओ और उसे रोक दो। नौकरी छोड़ दी, फिर से उसी दिन पर लौट जाओ। किसी से प्यार किया और रिश्ता टूट गया, सब कुछ पहले जैसा कर दो। यहां तक कि किसी की मृत्यु भी वापस पलटी जा सकती है। धीरे धीरे पूरी मानव जाति उस ग्रह की दीवानी हो गई। लोग अपनी जिंदगी जीने के बजाय उसे बार बार एडिट करने लगे। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट आरव वापस जाने से मना कर देता है। उससे पूछा जाता है, तुम अपनी गलतियां सुधारना क्यों नहीं चाहते? आरव मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मेरी गलतियां ही मुझे यहां तक लेकर आई है। वो अपनी टूटी हुई दोस्ती को याद करता है, अपनी असफल नौकरी को याद करता है, उस प्यार को जिसे वो बचा नहीं पाया उसको याद करता है, और कहता है, अगर मैं अपने अतीत की हर गलती मिटा दूं तो शायद मैं अपनी जिंदगी भी मिटा दूंगा, क्योंकि मैं जो हूं वो उन्हीं गलतियों की वजह से हूं। और वो उस ग्रह को छोड़कर वापस पृथ्वी पर चला जाता है, क्योंकि जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करो, और शायद यही है ब्रेक फ्री।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर, सिर्फ 1 रुपए में पाएं 1 GB डेटा रोज, 100 SMS रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता। सीमित अवधि का खास ऑफर, हर दिल जुड़े भारत बढ़े। BSNL के साथ आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1503 पर कॉल करें।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा, आपका दोस्त, आज का आपका होस्ट। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक साइफाई कहानी जिसमें एक रोबोट धरती पर धूम मचा देता है। धरती पर इंसान खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक रोबोट बचा था, एको। उसकी प्रोग्रामिंग बहुत सरल थी, किसी इंसान को खोजो, उसकी रक्षा करो। 100 सालों तक एको इंसानों को खोजता रहा। एक दिन उसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली, एक छोटी बच्ची की आवाज थी। एको, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अपनी जिंदगी पूरी मजे लेते हुए जियो। एको रुक गया, उसने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की। एको, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अपनी पूरी जिंदगी हमें खोजने में मत बिता देना। पहली बार उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ जवाब ही नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, सामने उगता हुआ सूरज था। और फिर एको ने वो किया जिसके लिए वो प्रोग्राम ही नहीं किया गया है। वो सूरज की तरफ चल पड़ा, क्योंकि शायद आज़ादी की शुरुआत तब होती है जब हम ये पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और पहली बार खुद से पूछते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। और यही है ब्रेक फ्री।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। मैं आपको साईफाई कहानियां सुना रहा हूं, और इस कहानी में इंसान कैसे रोबो बन सकता है आप सुनेंगे। फ्यूचर में साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो इंसान के इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। अगर आप सैड हो जाओ तो वो हैप्पीनेस दे देगी। अगर आपको कुछ किसी चीज का फियर हो तो वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगी। अगर आपको किस चीज से गुस्सा आ रहा हो तो आपको वो मशीन कामनेस दे देगी। देखना, एक एक्टर उस मशीन का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो एक परफेक्ट परफॉर्मेंस बनना चाहता है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट होता है। जब सीन में गुस्सा चाहिए, मशीन गुस्सा दे देती है। जब रोना हो, मशीन आंसू दे देती है। जब खुशी चाहिए, मशीन हैप्पीनेस एक्टिवेट कर देती है। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम होने लगती है, वो कुछ भी नेचुरली फील करना भूल जाता है। एक दिन स्टेज पर उसका सबसे

इंपॉर्टेंट सीन होता है, उसे अपनी को एक्टर को कहना है आई लव यू। वो मशीन को एक्टिवेट करता है, मशीन कहती है इमोशन अनअवेलेबल, और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन इस बार उसने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया था, वो सच में रो रहा था, क्योंकि सालों बाद उसने पहली बार कुछ जेन्युइनली फील किया था। उस दिन उसे समझ आया परफेक्ट एक्टिंग का मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है, उन्हें सच में महसूस करना है। और शायद जिंदगी में भी हम यही गलती करते हैं, हर दर्द को छुपाना, हर दर्द को कंट्रोल करना, हर इमोशन को दबा देना। लेकिन अपने इमोशन से भागना फ्रीडम नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करना असली फ्रीडम है, और यही है असली ब्रेक फ्री।

0: आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारताच्या पंतप्रधानांनी भारतात ज्या सौर क्रांतीची सुरुवात केली होती त्याचा परिणाम आता दिसायला लागलाय। भारतात 1-1 करोड 30 लाखांहून अधिक कुटुंबांच्या छतांवर सोलर पॅनल बसले। तुम्हीही या ऊर्जा क्रांतीचा भाग बना। पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा पीएम सूर्यघर.gov.in।

इस कहानी में हम साल 2090 में पहुंच गए हैं। साल 2090 में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। घर अपने आप साफ होते हैं, गाड़ियां खुद चलती हैं, AI डॉक्टर बीमारी का पता पहले ही लगा लेते हैं, लोगों का काम घंटों के बजाय कुछ मिनटों में ही हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने इंसान को एक चीज दी है, वक्त। लेकिन आरव को ये पसंद नहीं है। उसने तय कर लिया है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, ना AI, ना स्मार्टफोन, ना डिजिटल असिस्टेंट। यहां तक कि वो हाथ से चिट्ठियां लिखता और घंटों लाइन में खड़ा रहकर छोटे छोटे काम करता। उसे लगता था टेक्नोलॉजी इंसान को कमजोर बना रही है। मैं अपने आप खुद करूंगा सब काम। शुरुआत में उसे अपने फैसले पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो टेक्नोलॉजी से आजाद नहीं हुआ था, वो अपनी ही जिद का कैदी बन गया था। जहां एक छोटा सा काम टेक्नोलॉजी कुछ सेकंड में कर सकती थी, वहां आरव के घंटे चले जाते थे। वो अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन कागजी काम, सफर और रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में उसका पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, पापा, अगर टेक्नोलॉजी हमारा समय बचाती है तो आप उस समय को मेरे साथ क्यों नहीं बिताते? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात उसने पहली बार एक AI असिस्टेंट चालू किया। कुछ ही मिनटों में उसके सारे जरूरी काम पूरे हो गए। आरव बालकनी में बैठा था, सामने उसकी बेटी थी, दोनों चुपचाप आसमान देख रहे थे। तभी आरव मुस्कुराया और बोला, शायद टेक्नोलॉजी का मतलब इंसान की जगह लेना नहीं है, शायद उसका मतलब इंसान को इंसानों के लिए थोड़ा और समय देना है। उस दिन आरव ने टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन उसे पूरी तरह ठुकराया भी नहीं, क्योंकि ब्रेक फ्री का मतलब टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाना है। ब्रेक फ्री का मतलब है टेक्नोलॉजी को अपने नियंत्रण में रखना, ताकि वो तुम्हारा समय बचाए और तुम्हें सुकून दे, और तुम उस बचे हुए समय में सच में जिंदगी

0: 1.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं। सुनते हैं आज के प्रमुख समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री सतीशान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नई दिल्ली स्थित वीरभूमि स्मारक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। नांदेड़ स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने पानी में कम घुलनशील टीबी रोधी दवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने वाली एक नई तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट हासिल किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि इस तकनीक को आधुनिक दवा वितरण प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठाणे में 15 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने और घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोस्को अधिनियमन की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ प्रमुख समाचार यही समाप्त होते हैं।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। स्वागत है आपका म्यूजिक कैफे में। आज म्यूजिक कैफे में बात करेंगे एक ऐसी फीलिंग की जिसके बिना शायद हमारी जिंदगी थोड़ी अधूरी सी है, प्यार। वैसे आजकल प्यार भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। कुछ प्यार हाय के टेक्स्ट

मैसेज से शुरू होते हैं और वही टेक्स्ट मैसेज सीन पर ख़त्म हो जाता है। कहीं सिचुएशनशिप है, कहीं घोस्टिंग है, कहीं बेंचिंग है और कभी कभी तो जोम्बिंग भी है। रिश्ते के नाम बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन एक चीज़ शायद अब भी वही है, प्यार की ज़रूरत। और जब दूसरों से मिलने वाला प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो कम से कम खुद से मिलने वाला प्यार तो कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है खुद से प्यार करना, अपनी कमियां एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को माफ़ करना और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। खुद से प्यार करना सेल्फिश होना नहीं चाहिए, खुद को समझना, अपनी इज्जत करना और अपने लिए खड़े रहना, ये भी तो एक प्यार है। तो आज म्यूजिक कैफे का पहला गाना उन सभी लोगों के नाम जो दूसरों के प्यार का इंतजार करते करते थक गए हैं और अब खुद को और थोड़ा प्यार करना सीख रहे हैं।

0: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर, सिर्फ ₹1 में पाएं 1 GB डेटा रोज, 100 SMS रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता। सीमित अवधि का खास ऑफर, हर दिल जुड़े भारत बढ़े। BSNL के साथ आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-180-1503 पर कॉल करें।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

प्यार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन प्यार की कहानी में एक चैप्टर ऐसा भी होता है जिसे हम पढ़ना नहीं चाहते। हार्ट ब्रेक, किसी के चले जाने का दुख, मैसेजेस का बंद हो जाना और फिर भी हर जगह उसी इंसान का नजर आना। सबसे अजीब बात पता है क्या है? जिस इंसान के बिना हम सोचते थे कि हम जी नहीं सकते, एक दिन हम उसके बिना रहना सीख जाते हैं। टाइम सब कुछ इरेज कर देता है, लेकिन टाइम हमें इतना ज़रूर सिखा देता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमें कुछ सिखा कर चले जाते हैं।

0: नंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मेलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी,
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी।
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।

0: जी
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी।
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी।
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का

0: जाती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
1: ओहो, अब चल भी, बहस मत कर।
0: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
1: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
0: ठीक है चलो।
1: अरे तू कहाँ से आ गई? हट,
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
3: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
3: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
5: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए आ गए आ गए, देखो
6: देखो,

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है।
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
4: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
1: रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
4: बहुत अच्छा।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
6: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
7: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
8: ये मारा। हरा दिया।
9: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
10: जी,
9: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
10: नाना जी हा? मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
9: ये कैसी अजीब बात है।
10: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते हा? हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
9: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
10: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
9: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
10: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
9: अच्छा
10: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
9: हाँ, बेटा सुनाता हूँ।
10: जल्दी सुनाइए।
9: अरे सोचने तो दो,
10: जल्दी सोचिए।
9: किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
10: अरे जीवन काका।
9: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
11: बाबूजी
9: हाँ,
11: सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
9: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
11: जी
9: यहाँ लेट जाओ।
11: जी
9: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
10: जी,
9: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
10: जी अभी लाई।
9: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
11: जी
9: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
11: जी
9: पहली बारिश में

0: थोड़ा सावधान रहा करो।
1: जी जी जी
0: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
2: जी ये नाना जी।
0: हाँ ला बेटा ला। जीवन
1: जी
0: जरा मुंह खोलो। लो इसे जीप के नीचे रख लो।
1: आ, आ, आ,

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छू कर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी।

0: सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार

0: छापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी
0: समझ गई ना।
1: जी,
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग।

बहुत ही बेहतरीन फरमाइश। ये फरमाइश की थी अकोला से विजेंद्र घटोल जी ने। फिल्म का नाम था द जेंटलमैन। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

कुछ गाने हम सुनते हैं और कुछ गाने सुनते ही हम झूम उठते हैं। बहुत ही बेहतरीन फरमाइश ये फरमाइश की थी विठ्ठल मुंगासे ने अहिल्यानगर से। उससे पहले जो गाना प्ले हुआ था उसकी फरमाइश की थी प्रमोद चिंचोलकर अकोला से। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

का नाम है फिदा। प्रणव शिंदे जी कहते हैं, आज इस मूवी को रिलीज होकर 22 साल पूरे हो गए हैं। ये मूवी 20 अगस्त 2004 को रिलीज हो गई थी। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

कुछ गाने सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं। इस गाने की फरमाइश की थी गोरखनाथ मालुसरे जी ने। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

हमारा म्यूजिकल सफर यही खत्म हो रहा है दोस्तों, जल्द ही वापस मिलेंगे। ठीक 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। अलविदा।

0: Prime Minister Sheikh Hasina resigned last month on health grounds before completing his 5-year tenure. Jigyasa Pandey from News Desk.
1: Russia launched an overnight missile barrage on Ukraine's capital Kiev, killing at least 6 people and injuring 33 others. Ukraine's emergency service said the strikes hit 12 locations across 3 districts, damaging residential buildings, a medical facility, and an educational institution. The attack comes as Russia intensifies ballistic missile strikes on Kiev, putting further pressure on Ukraine's limited air defense capabilities. Meanwhile, Ukraine has stepped up long-range strikes against military and strategic targets deep inside Russia. In Keralam, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. There are also warnings of high waves and the swell surge phenomenon. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. Special caution has been advised in the areas of Chombala Ramanatagara, Valapatnam Numahi, Kunjathur Kottakunna, Kapil Podiyur, Chellanam Adikil Jetty, Munambam Marvakada, and Attupuram Kodungallur. Midhi M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: The Intermeteorological Department has issued orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and East Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, India's women's doubles duo of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat 7 seeds Rin Iwanaga and Kieneka Nishi of Japan in straight games. In hockey, the Indian women's team will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wageningen Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore ministerial roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Trisha Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की
4: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
3: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
4: हमारी मेरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
3: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा

0: कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुँचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने आत्म मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिले तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है, खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पटदौरा गांव है, वहाँ बिता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया
0: है जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नज़र आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज

0: बैठे हैं तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, तो ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
0: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया दिया है
0: और उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुँची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है
0: जी। पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने, आपके दोस्त, आपके परिवारजन, एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से, कहानियाँ, क्या कुछ होता है SSB में, जहाँ जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपकी किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी उनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है। फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
0: जी,
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियां तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियां वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
0: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवा देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए सीटीसी सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। फिजिकल टफनेस से लेकर मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसके उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बहनी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पर हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं बहनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SSQ गैंगटोक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे, और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए, और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं, ये तो हम अपनी फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसे कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं। यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी। 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने। ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: यह सफर मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है।

0: आपके रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देशप्रेम रह जाता है। जी, अच्छा हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की, तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना? तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है।
0: जी, और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है।
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश पर होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
0: जी, सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए। दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है। कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती।

0: एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। सूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। SSB इस ऑपरेशन के बाद जम्मू जिले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
1: उनके मन में इतना डर तक खौफ बन
0: इनके
1: गया।
0: इनके मन में डर भर बन गया था, और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि SSB के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू जिला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें SSB का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
1: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी। जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
0: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम टीम टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है, और वो सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है, और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की
1: जी,
0: बात
1: हर
0: है ये।
1: मेंबर के लिए, जितने भी
0: जी
1: मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है। आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए।
0: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं, और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं, और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए, और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है, लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है ही कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम ने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिरी में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात। उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
0: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे भी आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीकों से करने की प्रेरणा देता है और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे। मन में बात जरूर आती होगी,
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है और करते हैं हम लोग।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे डीजी महोदय के द्वारा भी डीजी सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी, इससे बेहतर करना है और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार हैं वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश।
0: जी, जी
1: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहाँ भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक ज़रूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी ज़बानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे? वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पर काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सिनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतने अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: क्या बात है, जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होते रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
1: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती
0: है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
1: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज़ समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे? आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा।
1: वो सबके लिए होता है,
0: वो सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो एक महीने में खत्म होना है या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
1: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है।
0: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आयो ये बताओ क्या लेकर आए हो।
1: हमेशा रहती है चाहत, रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
0: अच्छा बताइए, वैसे तो आप बहुत ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई जिंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
1: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
0: और रेडियो?
1: रेडियो भी है। वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है। दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
0: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो हैं ही, सहकर्मी तो हैं ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
1: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
0: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
1: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
0: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
1: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप

0: खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ। तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें। आप
0: सभी को जय हिंद मेरा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, या आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में शामिल करें।
0: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी।
1: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब, अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है, यहाँ पर समय कम है संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगे, लेकिन हम शिव शंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं, मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है, संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में है, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं, KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर दोस्त, आपका नाम में KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है, क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है, सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुंचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
0: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी
1: जी
0: जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
1: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर।

आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, चलिए हम और आप चलते हैं चार कदम और करते हैं बहुत सारी बातें। आज के सफर में 3 घंटों का साथ रहेगा आपका और हमारा। मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं लव योर जिंदगी सिर्फ एफएम रेनबो 107.1 पर, जहां बातें होंगी दिल की और गाने होंगे बिल्कुल आपके मूड के नाम। दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक नया पन्ना खोलती है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं, लेकिन हर मोड़ पर जिंदगी हमें एक मौका हमेशा देती है खुद से प्यार करने का, मुस्कुराने का और दिल खोल कर जीने का। तो कुछ देर के लिए दुनिया की सारी फिक्र भूल जाइए, आवाज का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए लव यू जिंदगी।

तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे दोस्त विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, इनको गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अरे सर, अभी तो बहुत सारे गाने बाकी हैं। प्रणव जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी गाने अच्छे लग रहे हैं। पंकज मोहोड़, प्रमोद जी, वैदेही गुड इवनिंग बोल रही हैं, गुड इवनिंग वैदेही, परमार जी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और जब बात हो उस प्यार की जो दिल को दीवाना बना दे, तो एक ही बात जहन में आती है, दिल आखिर माने भी तो कैसे। तो चलिए सुनते हैं प्यार और मासूमियत से भरा यह खूबसूरत नगमा, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, सिर्फ FM रेनबो 107.1 पर, जो है म्यूजिकली योर्स।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों प्रमोद जी बोल रहे हैं कि इतने गाने अच्छे बज रहे हैं कि उनको नींद आ रही है। अरे प्रमोद जी अभी सोइए मत, अभी तो बहुत सारे गाने आने बाकी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको गाना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपको गाने अच्छे लग रहे हैं। और श्रीधरन जी बोल रहे हैं कि आई हैव रॉब्ड हिज अटेंशन, मतलब मैंने इतने अच्छे गाने प्ले किए, तो थैंक यू सो मच आपका भी। एंड विट्ठल जी भी, उनको भी अच्छे लग रहे हैं, तो सबको गाने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर दोस्तों की आप कुछ रिश्ते दिल के इतने करीब होते हैं कि उनके लिए बड़े बड़े शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान में खुशी मिलती है, कभी उसकी आवाज़ में सुकून, और कभी लगता है कि शायद ऊपर वाले ने उस इंसान को हमारी ज़िंदगी में किसी खास वजह से भेजा है। इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है ये बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, कुछ बातें कहनी नहीं पड़ती। एक नज़र, एक मुस्कान और कभी कभी एक खामोशी ही दिल की पूरी कहानी कह जाती है। प्यार के इन्हीं अनकहे एहसासों को महसूस कराता है ये प्यारा गीत। FM रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त RJ रॉबिन।

तो दोस्तों, इसी के साथ समय हो रहा है लव यू जिंदगी को समाप्त करने का। ठीक 6:15 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में, जिसका नाम है अंदाज़े बयां। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1। मैं हूँ RJ रॉबिन।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों. कुछ बातें दिल तक पहुंचने के लिए आवाज नहीं

अंदाज मांगती हैं, और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें बयां करने के लिए बस सही अल्फाज चाहिए। मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं अंदाज बयां एफएम रेनबो 107.1 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महफिल, और आज के सफर में कुछ पल मेरे साथ बिताइए। हो सकता है आज की कोई बात आपके दिल की बात बन जाए, क्योंकि बात सिर्फ कहने की नहीं, बात है उसे महसूस कराने की, और यही है अंदाज़े बयां।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कभी कभी किसी रिश्ते में सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, फिर भी दिल में एक सवाल आता रहता है, आखिर ऐसा क्यों है? कुछ एहसासों को समझना आसान नहीं होता, बस उन्हें हम महसूस करते हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत एहसास को आवाज देता है अगला गीत। तो चलिए सुनते हैं एक मधुर नगमा, जाने क्या बात है। और अगर यह धुन आपकी यादों से कोई रिश्ता रखती है तो इस पल को थोड़ा और खास बनाइए। मैं हूं आरजे रॉबिन, सुन रहे हैं आप अंदाज़े बयां।

दोस्तों अंदाज़े बयां चल रहा है एफएम रेनबो 107.1 पर और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। कभी आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो हमें खुद से मिलने का एक बहाना भी देता है। वक्त के साथ इंसान बदलता है, सोच बदलती है, जिंदगी के मायने बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुराने रूप से मुलाकात करने की चाह बनी रहती है। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जिसमें बीते कल की परछाई भी और आज की सच्चाई भी है।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो अचानक दिल में दस्तक दे जाते हैं। कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सपना, या फिर किसी अपने के साथ बिताया हुआ वो खूबसूरत लम्हा। हम उन्हें रोकना नहीं चाहते, बस कुछ देर उन्हीं ख्यालों के साथ रहना चाहते हैं। तो चलिए, ऐसे ही एक एहसास को संगीत के हवाले करते हैं। एक खूबसूरत नगमा जो शायद आपके दिल में भी कोई पुराना ख्याल जगा दे। और इसे कुछ चंद गानों के साथ समय हो रहा है कि हम विदा लें, और ठीक 7:10 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी आपके चहेते कार्यक्रम हम तुम में। और आज की हमारी जो थीम है, आपको ऐसे गाने की रिक्वेस्ट भेजनी है जिसमें नंबर सो अंक हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, तो फटाफट सोचिए और अपनी फरमाइशें भेजिए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके चहेते प्रोग्राम हम तुम मैं लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज की जो हमारी थीम है वो ऐसे गाने की चॉइस आपको भेजनी है जिसमें नंबर्स हो, यानी अंक हो। तो बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट आ चुकी है, कुछ गाने हमने सेलेक्ट भी किए हैं और भी आ रही है। तो चलिए सबसे पहले ये गाना प्ले करते हैं जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों ने की है। और उससे पहले जो कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। इस पर व्हाट्सएप करके आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। और जो पहला गाना जो हम प्ले करने वाले हैं उसकी रिक्वेस्ट आई है फिरोज सिगनपुर।

रविया, पंकज महोड़, हितेंद्र दास, विजेंद्र घटोल, राम एंड श्रीधरन और दीपा पालकर, काफ़ी लोगों ने ये सेम गाना रिक्वेस्ट किया, इसलिए शुरुआत करते हैं इसी गाने से।

0: का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

0: वाला है वो अपने दौर का एक सुपर हिट गाना है, और इसके चॉइस की है रविंद्र पंडित जो कि है नासिक से। चलिए सुनते हैं उनके चॉइस का ये गाना।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

आज का हमारा नंबर फरमाइश काफी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे गाने प्ले किए लेकिन बहुत सारे गाने प्ले नहीं कर पाए हम, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब मौका मिलेगा तो गाना प्ले करूँगा।

बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल और मेरे जाने के बाद इट्स टाइम टू टर्न अप द वॉल्यूम एंड रॉक विद आरजे शिल्पा ऑन रॉक विद जॉक फीचरिंग सम अमेजिंग वेस्टर्न म्यूजिक। सो कीप ऑन लिसनिंग एफएम रेनबो 107.1। आई एम आरजे रॉबिन, टेक केयर एंड बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शन

0: कार्यों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
4: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना

0: लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की

0: 31वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यम।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पैसे पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and Food Safety Officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A report.
4: The High-Powered Inquiry Committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. The other members of the High-Powered Inquiry Committee are former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन

रंग महफिल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। और रंग महफिल में हम जिंदगी को बहुत करीब से देखने की कोशिश करते हैं और उस जज्बे का एहसास करने की कोशिश करते हैं जो हमारे दिल के आसपास रहता है। और वो जज्बा हम सब के लिए, हम सब की जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी हुआ करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो जज्बा नहीं तो जिंदगी जिंदगी नहीं दोस्त। वो कहते हैं ना कि क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बाद सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। वक्त मिला तो सोचेंगे।

तुम्हें एक बात कहनी थी, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, चमकती चांद की बातें, ये बूंदें और बरसातें, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नज़ारे हैं, कहो किसके इशारे हैं। सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने, मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। मैं किस्सा मुख्तसर करके, ज़रा नीची नज़र करके, ये कहता हूँ अभी तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे, न जाओ अब कहीं क्योंकि मोहब्बत हो गई है तुमसे।

बहुत ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत कलाम छाया गांगुली की आवाज़ में। दिल वाकई यही करता है कि वो कहीं ना जाए, थोड़ी ही देर के लिए ठहर जाए, थोड़ी दूर साथ चले। और दिल करता है कि बस वो यूं ही पहलू में बैठा रहे, कहीं ना जाए। और जब वो उठ के जाने लगता है तो समझ लीजिए कि दिल की जो धड़कनें हैं वो रुक सी जाती हैं। अजब हाल है इस दिल का, और न जाने क्यों ये दिल बार बार उसे कैद करने के बारे में सोचता है। लेकिन जनाब, ये दिल कई बार उसके लिए धड़कना भी छोड़ देता है। इंसान का दिल टूट भी जाता है, धीरे धीरे वो खामोश हो जाता है। धड़कता है दिल मगर किसी के इंतज़ार में नहीं। सांसें चलती रहती हैं मगर जिंदगी जैसे कहीं पीछे छूट जाती है। वो कहते हैं ना कि दिल ही तो है नसंग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कभी जिस दिल में मोहब्बत की रोशनी थी वो कई बार तन्हाई का भी शिकार हो जाता है। कई बार ये दिल बार बार पूछता है कि आखिर क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए।

आजा कभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है मगर तेरी कमी है।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सिया के रह गईं। न जाने क्यों जब भी कोई इस तरह का खूबसूरत शाहकार सुनते हैं, तब क्यों लगता है कि वाकई शाम धुआं धुआं सी और न जाने कितनी कहानियां अक्सर याद आती हैं। आप जानते हैं, पसंदीदा शख्स में भी शिफा होती है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पसंदीदा शख्स में भी शिफा होती है, जिसको फकत देख लेने से ही बेचैन दिल को सुकून मिल जाता है। क्योंकि जनाब, ये दिल बार बार उसे देखना चाहता है, बार बार उसे महसूस करना चाहता है। वो पास हो तो जिंदगी खूबसूरत नजर आती है, वो पास हो तो फिर पांव जमी पे कहाँ पड़ते हैं। एक नज़र, बस एक नज़र, ये दिल चाहता है कि बस उसी का दीदार हो।

रुख से पर्दा उठा दे, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। तो जनाब, इसी को तो कहते हैं दिल से मोहब्बत। बस एक नज़र, बस एक नज़र हमने सीने से लगाया, दिल ना अपना बन सका। मुस्कुराकर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। मुस्कुराकर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। जी हाँ, इसी को तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं इश्क। वो सामने हो तो दिल तड़प उठता है कि काश उससे बात हो जाए, और जब उससे बात होने लग जाए तो लफ्ज नहीं मिलते कि आखिर क्या कहा जाए, क्या दिल की दास्तां सुनाई जाए, कौन सी कहानी बयां की जाए। बस फिर दिल करता है कि जब ख्वाब में हो मुलाकात, तो शायद शायद कुछ कहा जा सकता है।

ख्वाबों की बातें, ख्यालों की बातें, ये चांद की बातें, ये फूलों की बातें, ये आसमान की बातें और ये खूबसूरत महबूब की बातें, यही तो है जो दिल को करार आ ही जाता है ना दोस्तों। जिंदगी इसी का नाम है और देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी शांति नगर से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है और लिखते हैं कि आवाज़ बहुत मीठी है, क्या राज है भाई। इसका कोई राज नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं, बस इतनी सी ही बात है। और हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा। बस हवाओं तुम्हारा जिक्र कर लेता हूँ और चांद से तुम्हारा पता पूछ लेता हूँ। चाहत ऐसी कि अभी ख़त्म ना हो और मोहब्बत ऐसी हर पल गहरी होती जाए। बहुत अच्छा लिखा है आपने फारूक अली खान साहब, बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये हमारे पास मैसेज किसका है, आपने दोस्त अपना नाम नहीं लिखा और आप सुनना चाहते हैं कुछ और गज़लें, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छा सुना सकें। और फ़िलहाल प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एनी रोमांटिक सॉन्ग तो मुझे लगता है ये हमें लिखकर भेजा है रणधीर यादव ने और तारा देवी ने। और लिखना चाहते हैं आप ये रणधीर यादव जी कि उनकी बर्थडे है उनकी मैम की यानी कि उनकी वाइफ की, तो सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को आवाज़ दे रही हूँ और आपका ये खूबसूरत साथ ऐसे ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे तारा जी, आप हमेशा साथ रहें और हमेशा आप लोग ऐसे ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी में कदम से कदम मिलाकर साथ चलते रहें, और क्या चाहिए, ठीक है ना। और प्रोग्राम बहुत लाजवाब है, सौरभ है महाराष्ट्र से, और अच्छा लगता है आपको अगर कार्यक्रम और अच्छा लग रहा है तो यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सब दिल से सुनते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक एक लफ्ज़ पर गौर करते हैं, तो बहुत शुक्रिया मनीष, आप सुनते हैं और लिख भी लेते हैं तो ये बड़ी बात है। तो चलिए, हमारी तो जो बातें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती हैं दोस्तों क्योंकि आप सब हमारे साथ रहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत को पसंद करते हैं। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और जब बात रंगे महफिल की आती है तो उसकी याद आई है सांसों, ज़रा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों, ज़रा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो जनाब, मोहब्बत को फिर देंगे आवाज़ किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए मोहब्बत की जो खूबसूरत कंदील है इसे रोशन रखिए, क्योंकि जब आप इसे रोशन करते हैं तो पूरी दुनिया में मोहब्बत का उजाला होता है। चलती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल आप सबकी नज़र कर रही हूँ इस उम्मीद पर कि आपको पसंद आएगी। और जाने से पहले हमेशा की तरह चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

मध्यरात्रि 12 बज चुके हैं और अब एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 12:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक जीरो आर शो में, जिसमें नॉनस्टॉप गानों का मजा लेंगे बिना रुके। तो अब स्टार्टिंग करते हैं अजहर मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने के साथ, और ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों की लड़ी चलती जाएगी। तो गानों की दुनिया में खो जाइए और झूमते रहिए।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना फ्रॉम द मूवी वो लम्हे, और अभी आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक गाने। शो का नाम है जीरो आर शो और इसमें आप नॉनस्टॉप सूदिंग गानों का मजा ले रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट है शान और श्रेया घोषाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी यहाँ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

राघव चैतन्य की आवाज में आपने सुना फ्रॉम द मूवी थप्पड़, और आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक शो, और शो का नाम है जीरो आर शो, और रात के 12:51 हुए हैं। आधी रात के 1 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, लेकिन अभी ऐसे ही नॉन स्टॉप गानों का सिलसिला जारी है, और अब रंगकिरण गुप्ता की आवाज में सुन धागा फिल्म से ये गाना।

आधी रात के एक बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के

राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश ने नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। यह था FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:03 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप गाने आप सुनते ही हैं इस पूरी रात में। लेकिन अभी जो शो है उसका नाम है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स, यानी कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने। तो शुरुआत रिश की आवाज में इस गाने के साथ करते हैं। तो ऐसे ही गानों की लिस्ट जो है, नॉनस्टॉप गाने चलते जाएंगे और एक के बाद एक आप इन गानों का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में खो जाइए। कमिंग अप रिश।

तरहानी गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे बादल फिल्म से ये वाला गाना, और शो का नाम है सुहानी रात, जिसमें आप कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने का मजा ले रहे हैं। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल, और अभी टाइम हुआ है रात के 1:48, रात के 2 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले गानों का मजा लेते रहिए।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आधी रात के 2 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच की और उसके लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में

आधी रात के 2:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब शुरू होता है वो शो जिसमें आप वो गाने जो कभी आप सुनते थे और फिर टाइम के साथ उन गानों को भूल गए और उन्हीं गानों को दोबारा रिमाइंड कराने का ये वाला शो है जिसका नाम है भुलाए ना बने। तो इस शो में आप वो वाले गाने सुनेंगे जो आप भूल चुके हैं लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं और आपको सच में सुन के बहुत मजा आएगा। तो अभी आप सुनिए सोहेल सेन और पामेला जैन की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी खेले हम जी जान से और ये गाना है सपने सुलने, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसके साथ ही गानों की लड़ी नॉन स्टॉप चालू हो जाएगी। तो बस गानों को ऐसे ही मजा लेते रहिए और गानों के बीट्स पर झूमते रहिए।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

किसी सबसे अच्छे इंसान की याद और ये वाले गाने आपने सुने। ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी जब वी मेट मोहित चौहान की आवाज में। रात के 2:30 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है भुलाए ना बने, जिसमें आप वो वाले गाने सुन रहे हैं जो किसी टाइम पर आप सुनते थे लेकिन भूल चुके हैं और अभी उन गानों को दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं। तो अभी इन गानों को सुनिए और गानों की दुनिया में खो जाइए। और ये गाना है फ्रॉम द मूवी सोचा ना था।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शो बुलाए ना बने, जिसमें नॉनस्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं। रात के 2:49 एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं।

आधी रात के 3 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुने मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रीसा चौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज, जैसे कि आप रात 12 बजे से सुन ही रहे हैं नॉनस्टॉप गाने एक के बाद एक। तो इस घंटे भी आप पूरे घंटे आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने और वो भी कुछ गाने सॉफ्ट और कुछ गाने थोड़े से सैड, मतलब कुछ गानों को मतलब सिर्फ आप इंजॉय करिए, दिल पे मत लीजिए। तो अभी के लिए आप सुनिए सलीम मर्चेंट की आवाज में जोड़ी ब्रेकर्स मूवी से ये गाना और इसके बाद एक के बाद एक गाने शुरू हो जाएंगे। तो गानों का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में आधी रात में खो जाइए।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

पहले तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडी शोज और ये वाला गाना था फ्रॉम द मूवी तनु वेड मनु और मोहित चौहान की आवाज थी। ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों का मजा लेते रहिए कमिंग अप फ्रॉम द मूवी फैशन श्रुति पाठक की आवाज में।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले, 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया ये फैन और झांगशू शियान से खेलेगी। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई और आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

रात 12 बजे से लेकर और अभी तक आप नॉनस्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। सुबह के 4:03 हुए हैं। एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी दिल्ली का चैनल है ये। और अब शुरू होता है सारेगामा, जिसमें आप नॉनस्टॉप गानों का मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं तानिया सिंह की आवाज में इस हॉट एंड हैपनिंग गाने के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आई होप आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा होगा। और ये सोज एल्बम से गाना था, गजल थी जगजीत सिंह जी की आवाज में, और शो का नाम है सारेगामा। सुबह के 4:22 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। और कमिंग अप नेक्स्ट यासिर देसाई की आवाज में फ्रॉम द मूवी गोल्ड।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

गाना था फ्रॉम द मूवी सात खून माफ। विशाल भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:50 हुए हैं और ऐसे ही गानों का सिलसिला चलता रहेगा। और अभी ज्योति कटांगरी और कीर्ति सागर की आवाज में सुनिए ये वाला गाना।